उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

उसके चचाजाद का बेटा नहीं हूँ। क्या सैयदुश शहदा हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु मेरे बाप के चचा नहीं थे? क्या जाफर तैयार मेरे चचा नहीं थे? क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नहीं सुना कि मैं और मेरा भाई जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं? अगर मेरा ये बयान सच्चा है, और यकीनन सच्चा है क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है उस वक्त से आज तक झूठ नहीं बोला, तो बतलाओ क्या तुम्हें बरहना तलवारों से मेरा इस्तकबाल करना चाहिए? अगर तुम मेरी बात का यकीन नहीं करते तो तुम में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे तस्दीक कर सकते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मैं तुम्हारे नबी का बिला वास्ता नवासा हूँ। क्या तुम मुझे इसलिए हलाक करना चाहते हो कि मैंने किसी की जान ली है, किसी का खून बहाया है, किसी का माल छीना है? कहो क्या बात है, आखिर मेरा कसूर क्या है? ये पत्थरों को मोम कर देने वाला खिताब भी मुखालिफीन को उनके इरादे से बाज न रख सका, और हुज्जत तमाम हो जाने के बाद सैयदुश्शहदा ने अपना फ़र्ज अदा कर दिया। इराकी फ़ौज पर इसका कोई असर न हुआ। अलबत्ता हुर्र इब्न यजीद तमीमी इराकियों का साथ छोड़कर आपके साथ हो गए। इसके बाद जंग शुरू हो गई। तरफ़ैन से एक एक दो दो जवान मर्द निकलते थे और तलवार के जौहर दिखाते थे। हज़रत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के तरफदारों का पल्ला भारी था, जो सामने आता था मारा जाता था। दुश्मन के सालार ने यह हालत देखी तो पुकार उठा, बेवकूफ़ो पहले जान लो किससे लड़ रहे हो, ये लोग जान पर खेले हुए हैं, तुम इस तरह एक एक करके कत्ल हो जाओगे, ऐसा न करो, ये मुट्ठी भर हैं, तुम पत्थरों से इन्हें मार सकते हो। इसके बाद आम हमला शुरू हुआ। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को तुलू होने वाले सूरज ने तारीख़ इस्लाम का वो दर्दनाक सानहा देखा जिसकी मिसाल मुमकिन नहीं। हक और नेकी के एक एक परिस्तान ने मर्दानावार मुकाबला किया। हज़ारों के मुकाबले में 72 कुस्सी नफूस ने अपनी जिंदगियां दीन की बका के लिए नछावर कर दीं। सैयदुश्शहदा के बेटों, भाइयों, भतीजों और जानिसारों ने अपनी जिंदगियों का नजराना राह हक में पेश कर दिया। उनमें मासूम अली असगर की कुर्बानी भी शामिल है। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीद आज़म के मुकद्दस जिस्म को शकीउल क़ल्ब यजीदियों ने घोड़ों से रौंद डाला, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना एक मरतबा फिर दुनिया की नजात का जरिया बन गया। हमारा सलाम हो इमाम शहीद और उनके पाक बाज साथियों पर, जो हमें जिंदा रहने और मरने का तरीका बता गए। बिना करदंद खुश रस्में बखा को खून गलती दन, खुदा रहमत कुनद ई आशिकाने पाक तीनतरा।

0: होकर इमाम की तरफ आते हुए तीरों को अपने सीने पर रोकते रहे। उधर नमाज तमाम हुई, उधर सईद इब्ने अब्दुल्ला शहीद होकर और जुहैर जख्मी होकर खाक पर गिर पड़े। बाद जुहर इमाम के बाकी मानदा साथी एक एक करके मैदान में जाते रहे और मनसबे शहादत पर फायज होते रहे, जब तक हुसैन के अंसार में से एक फर्द भी बाकी रहा। उनकी वफा ने गवारा न किया कि खानदान रिसालत का कोई फर्द मैदान में जाए, लेकिन फिर वो वक्त भी आ गया जब सिवाय चंद अजीजों के कोई बाकी न रहा। इस मरहले पर इमाम हुसैन के जवां साल फर्जंद हजरत अली अकबर सबसे पहले मैदान में गए। उनकी शहादत के बाद औलाद अकील, औलाद जाफर, औलाद हसन और औलाद अली कुर्बान होती रही। इन कुर्बानियों में आखिरी कुर्बानी इमाम हुसैन के 6 माह के फर्जंद अली असगर की थी। 6 माह की शहादत वो शहादत थी जिसने यजीद और यजीदियत के चेहरे पर हमेशा के लिए ऐसी स्याही मल दी जो हीला साजी की किसी कोशिश से भी साफ नहीं हो सकती। और अब ज़िबह अज़ीम की बारी थी। हुसैन अहले हरम को सब्र की तलकीन करते हुए मैदान को रुखसत हुए। 3 दिन की भूख और प्यास, सुबह से सदमात का हुजूम, जहन में कुछ देर बाद जलते हुए खैमों और लुटती हुई चादरों का तसव्वुर, लेकिन इन सब बातों के बावजूद अली के फर्जंद ने लश्कर आदा पर 7 हमले किए। हर हमला खंदक व खैबर की याद ताज़ा करता रहा। इस दौरान इमाम के जिस्म अक़दस पर हर तरफ से वार हो रहे थे। पहले तीर लगते रहे, फिर नेजे लगने लगे, पत्थर फेंके जाने लगे, शमशीरों के वार होते रहे। आखिर वो वक्त आया कि आप पुश्त रहवार से खाक पर तशरीफ़ लाए। एक मरतबा ज़ौक़े इबादत से जोश मारा और हुसैन ने अपना सर सजदे में रख दिया। एक ऐसा सजदा जो कायनात की तमाम इबादतों के लिए सरमाया इफ्तिखार बन गया। एक ऐसा सजदा जो इतना तवील हुआ कि मौत व हयात का तमाम सफ़र सजदे के दौरान तय हो गया। अभी सजदा तमाम नहीं हुआ था कि शिमर-ए-ज़िल-जौशन के खंजर ने जिस्म और जान का ताल्लुक मुनक़ता कर दिया। इधर रोज़े आशूर का सूरज तेज़ी से मगरिब की तरफ डूबने जा रहा था, उधर सरे हुसैन नोक नैज़ा पर तुलू होकर इस्लाम को एक नई सुबह की खुशखबरी सुना रहा था।
1: रात आई है, शब्बीर पे यलगारे बला है, साथी न कोई यार न गमखार रहा है, मुनिस है तो एक दर्द की घनघोर घटा है, मुशफिक है तो एक दिल के धड़कने की सदा है, तन्हाई की गुर्बत की परेशानी की शब है, ये खानाए शब्बीर की वीरानी की शब है। दुश्मन की सिपा ख्वाब में मदहोश पड़ी थी, पल भर को किसी की ना इधर आंख लगी थी, हर एक घड़ी आज कयामत की घड़ी थी, ये रात बहुत आले मोहम्मद पे कड़ी थी, रह रह के बुका अहले हरम करते थे ऐसे, थम थम के दिया आखिरे शब जलता है जैसे, एक गोशे में इन सोख्ता सामानों के सालार, इन खाक बसर खानुमा वीरानों के सरदार, तशना लबो दरमांदाओ मजबूरो दिलफगार, इस शान से बैठे थे शहे लश्करे अहरार, मसनत थी न खिलत थी न खुदाम खड़े थे, हाँ तन पे जिधर देखिए 100 जख्म सजे थे, कुछ खौफ था चेहरे पे न तश्वीश जरा थी, हर एक अदा मजहरे तस्लीम और रजा थी, हर यक निगह शाहिदे अकरारे वफा थी, हर अरे दस्तूरे जफा थी, पहले तो बहुत प्यार से हर फर्द को देखा, फिर नाम खुदा का लिया और यूं हुए गोया, अलहम्द करीब आया गमे इश्क का साहिल, अलहम्द कि अब सुबह शहादत हुई नाजिल, बाजी है बहुत सख्त मियाने हक व बातिल, वो जुल्म में कामिल है तो हम सब्र में कामिल, बाजी हुई अंजाम मुबारक हो अजीजो, बातिल हुआ नाकाम मुबारक हो अजीजो, फिर सुबह की लौ आई रुखे पाक पे चमकी, और एक किरण मक्तले खूनाक पे चमकी, नेजे की अनी थी खसो खाशाक पे चमकी, शमशीरे बरहना थी के अफलाक पे चमकी, दम भर के लिए आई ना रू हो गया सहरा, खुर्शीद जो उभरा तो लहू हो गया सहरा। پر باندھے ہوئے حملے کو آئی صفے آدا، تھا سامنے ایک بندہ حق یکو تنہا، ہر چند کے ہر ایک تھا ادھر خون کا پیاسا، یہ روب کا عالم کہ کوئی پہل نہ کرتا، کی آنے میں تاخیر جو لیلائے قضا نے، خطبہ کیا ارشاد امام شہدا نے، فرمایا کہ کیوں در پہ آزار ہو لوگو، حق والوں سے کیوں برسرے پیکار ہو لوگو، واللہ کے مجرم ہو گنہگار ہو لوگو، معلوم ہے کچھ کس کے طرف دار ہو لوگو، کیوں آپ کے آقاؤں میں اور ہم میں ٹھنی ہے، معلوم ہے کس واسطے اس جہاں پہ بنی ہے، ستوت نہ حکومت نہ حشم چاہیے ہم کو، اورنگ نہ افسر نہ علم چاہیے ہم کو، زر چاہیے نہ مال و درم چاہیے ہم کو، جو چیز بھی فانی ہے وہ کم چاہیے ہم کو، سرداری کی خواہش ہے نہ شاہی کی حوث ہے، ایک حرف یقین دولت ایمان ہمیں بس ہے، طالب ہیں اگر ہم تو فقط حق کے طلبگار، باطل کے مقابل میں صداقت کے پرستار، انصاف کے نیکی کے مروت کے طرفدار، ظالم کے مخالف ہیں تو بے کس کے مددگار، جو ظلم پہ لانت نہ کرے آپ لائیں ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دین ہے، تا حشر زمانہ تمہیں مکار کہے گا، تم عہد شکن ہو تمہیں غدار کہے گا، جو صاحب دل ہے ہمیں ابرار کہے گا، جو بندہ حر ہے ہمیں احرار کہے گا، نام اونچا زمانے میں ہر انداز رہے گا، نیزے پہ بھی سر اپنا سرفراز رہے گا، کر ختم سخن محو دعا ہو گئے شبیر، پھر نعرہ زنا محو وغا ہو گئے شبیر، قربان رہے کو صفا ہو گئے شبیر، خیموں میں تھا کوہرام جدا ہو گئے شبیر، مرکب پہ تنے پاک تھا اور خاک پہ سر تھا، اس خاک تلے جنت فردوس کا در تھا،
2: نام حسین حشر تک آباد رہے گا، برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا، حسین تیرے خون کی ہر ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

जलवों से शम देरो हरम झिल मिला गई। शह की नमाज असर जो खालिक को भा गई। सजदों से करबला की जमी जगमगा गई। रूहा

तारीफ व तौसीफ से आजिज और दरमांदा हैं, वो जिसकी नेमतों को शुमार करने वाले पूरी तरह गिनने से कासिर हैं और जिसकी इनायात का हक कोशिश करने वाले अदा नहीं कर पाते, जिसकी हकीकत के इदराक से बुलंद हिम्मत अफराद की उकूल हैरान हैं और फिक्र ख्याल की गहराइयाँ उस तक पहुँचने से कासिर हैं, उसकी सिफात की कोई हद नहीं और न उसकी नेमात शुमार की जा सकती हैं। उसने खलायक को अपने इख्तियार और कुदरत कामिला से पैदा किया, हवाओं को अपनी रहमत और मेहरबानी से फैलाया और ज़मीन को पहाड़ों और चट्टानों से मुस्तहकम और उस्तवार किया। दीन की पहली बुनियाद उसकी मारिफत है और मारिफत का कमाल उसकी तस्दीक है और कमाल तस्दीक तौहीद है और कमाल तौहीद उसको हर शय से अफजल व बरतर मानना है और कमाल इखलास उसकी सिफात की उसकी ज़ात से नफ़ी है, क्योंकि हर सिफत गैर मौसूफ़ है और हर मौसूफ़ गैर सिफत है। जिसने उसकी तौसीफ में ज़ात को सिफात से मिलाया उसने गोया ज़ात बारी में दुई पैदा की, और जिसने दुई पैदा की उसने अल्लाह की ज़ात में तकसीम को माना, और जिसने ज़ात बारी में तकसीम को माना वो नादान है। जिसने खुदा की तरफ इशारा किया उसने उसे महदूद कर दिया। अल्लाह हमेशा से मौजूद है मगर वो हादिस और नौ पैदा नहीं, वो मौजूद है मगर उसकी हस्ती अदम और नेस्ती के बाद नहीं, वो हर शय के साथ है लेकिन बतौर हमसर नहीं, वो हर चीज़ से अलग और जुदा है मगर किसी से दूर नहीं, वो हर काम का फाइल है लेकिन उसका फेल किसी हरकत का नतीजा नहीं। उसने जहानों को बनाया और पहले पहल बनाया बगैर इसके कि गौर व फिक्र करता या किसी के तजर्बे से फ़ायदा उठाता। उसने न तो अपनी ज़ात में कोई हरकत पैदा की और न पहले से कोई एहतमाम ही किया। उसने हर शय को तबीयत और मिजाज अता किया और हर चीज़ की शक्ल व सूरत मुअय्यन की, वो उनकी इब्तिदा और आगाज़ से भी पहले उनसे वाकिफ था, उसका इल्म इन सब पर मुहित था और वो इनकी हालत और पोशीदा और कैफियत से भी आशना था। उसकी ज़ात को हवा से इंसानी पा नहीं सकते, न कोई हिस्स उसका इहाता कर सकती है, न निगाहें उसे देख सकती हैं और न पर्दे उसे छुपा सकते हैं। उसने अपने क़दम पर मखलूक़ात की ईजाद से दलील कायम कर दी है और मखलूक़ात को हादिस करके अपनी ज़ात और वजूद का सबूत दे चुका है। वो अपने वादों में सच्चा है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता बल्कि अदल को कायम करता है और अपने फैसलों में इंसाफ से काम लेता है। उसने रंगारंग मखलूक को बनाकर अपनी अजलियत पर गवाह बना दिया है, वो बाकी है लेकिन किसी इंतहा से वाबस्ता नहीं, वो कायम है मगर किसी सुतून के सहारे नहीं, वो जहनों में आता है मगर ज़ाहरी हवास के जरिए से नहीं। हम सब उसे देखते हैं मगर आमने सामने होकर नहीं, सोचने की कुव्वतें उसे घेर नहीं सकती, वो अपने मज़ाहिर के ज़रिए से अपनी मखलूक़ात के सामने जलवा फिकन है। वो सबसे बड़ा है मगर इन मानों में बड़ा नहीं कि तमाम इंतहाएँ उस पर ख़त्म होती है, उसके वजूद ने उसे बड़ा नहीं बनाया, वो ऐसी बुजुर्गी वाला है जिसकी इंतहा नहीं। उसकी अज़मत व किबरियाई इसमें है कि उसकी शान बड़ी और उसका इक़्तदार बहुत ही अजीम है। बस मुनज़्ज़ा है वो ज़ात जिसके हुजूर में ज़मीनों और आसमानों में मौजूद हर शय बिला तअम्मुल सजदा-रेज़ है और अपनी आजिज़ी और फरोतनी का इजहार करने के लिए अपना रुखसार खाक पर रखती है। हर ज़ीरू और गैर ज़ीरू की मिहार उसके जलाल व कुदरत के हाथ में है, चरिंद और परिंद भी उसी के हुक्म फरमान के तहत हैं, वो इनके परों और सांसों की तादाद से भी वाकिफ है, उसी ने इन सब की रोज़ी मुअय्यन और मुकर्रर कर रखी है, वो इन सब की रोज़ी का ज़ामिन है, वही घने बादलों को लाने वाला है, वही इनसे पानी बरसाता है और हर मुकाम का हिस्सा भी मुअय्यन करता है। जिसने उस ज़ात को किसी कैफियत का पाबंद किया उसने उसे एक न माना, और जिसने उसके साथ तशबीह दी उसने अल्लाह को मुराद न लिया। वो फाइल है लेकिन आलात का पाबंद और मोहताज नहीं, वो तकदीर बनाने वाला है।

0: पुकारे उठो मेरे भाई, उठो मेरे भाई।
1: सामिन, आप FM 101 से मुहर्रम उल हराम की खसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

बुझे जो प्यास तो आँखों के जाम हाजिर हैं, ये सिन ये हश्र ये सदमे नए नए बीबी कहाँ पे

और नाला जारी उन्हें साफ सुनाई दे रही है। बस ये नेकोकार अपनी कमर इबादत इलाही में झुका देते हैं, अपने माथों हथेलियों जानुओं और पैरों के सिरों को सीधे के लिए फर्श कर देते हैं और रब रहीम से दुआ करते हैं कि हमारी गर्दनों को अपने अजाब की जंजीरों से आज़ाद कर दे और हमें आखिरत की तकलीफ और सख्ती से महफूज रख। दिन के वक्त के बंदे बुर्दबार और हलीम होते हैं, बेशक यही परहेजगार और नेकोकार हैं। खुदा के खौफ ने उन्हें इस तरह लागर कर दिया है जैसे तीर की लकड़ी को रंदे से बारीक और पतला कर दिया जाता है। देखने वाला ख्याल करता है कि ये बीमार हैं, हालांकि इन्हें कोई मरज लाहिक नहीं होता। बाज लोग उन्हें दीवाना और मजनून समझते हैं। ये न दीवाने हैं और न मजनून, बल्कि इन्हें तो बहुत बड़ी बात यानी अंदेशा क़यामत। ये थोड़ी सी इबादत पर राजी नहीं होते और ज्यादा से ज्यादा इबादत से भी मुतमईन नहीं होते। जब नेकों का जिक्र होता है तो ये डर जाते हैं और कहते हैं, मैं अपना हाल दूसरों से बेहतर जानता हूँ और मेरा रब मुझसे दाना तर है। ऐ अल्लाह, लोग जो कुछ मेरे बारे में कहते हैं उस पर मुझे न पकड़ना और जो कुछ मुझे ये समझते हैं मुझे उससे भी बरतर बना देना और मेरे जिन गुनाहों को ये नहीं जानते उन्हें तू बख्श देना। इन लोगों को तुम दीन के मामले में तवाना और मजबूत पाओगे, नर्म गुफ्तार और खुश अखलाक, ईमान में कामिल, इल्म के जोया, तवंगरी में मियाना रव, बंदगी और इबादत में फरोतन, फक्र व तंग दस्ती में साबिर व शाकिर, तमो आस से दूर और नफूर। ये जो नेक काम करते हैं उन पर इतराते नहीं बल्कि डरते रहते हैं। ये लोग हर उस चीज से रगबत नहीं रखते जो बाकी रहने वाली नहीं। तुम देखोगे कि इनकी आरजुएं और ख्वाहिशें कोता और कलील होती हैं, खता और लग्जिश कम, दिल इनके झुके हुए और नफ्स मुतमईन, खुराक थोड़ी और मेहनत ज्यादा, नफसानी ख्वाहिश नापैद, गुस्से को ये पी जाते हैं। इनका दिल किसी हाल में भी याद खुदा से खाली नहीं होता। कोई इन पर जुल्म करे तो उसे माफ़ कर देते हैं, जो इन्हें इनके हक से मारूम करता है ये उस पर भी एहसान करते हैं। गुफ्तार इनकी हमवार और नामुनासिब अफ़ाल इनसे सरजद नहीं होते, पसंदीदा अतवार नुमायाँ होते हैं। इनकी निकोई लोगों की तरफ मुतवज्जे रहती है और बदी लोगों की तरफ से पुष्ट किए हुए, सख्ती के ज़माने में बावक़ार और बुर्दवार, नागवारी की हालत में शिकेबा, खुशी और आसाइश के वक्त सिपास गुजार और शुक्र करने वाले, जिससे इनाद रखते हैं उसके हक में भी मासियत का इत्तेकाब नहीं करते, कबल इसके कि हक पर शहादत दें उसका इतराफ और इकरार कर लेते हैं, जो चीज़ें सौंपी जाए उसे ज़ाय नहीं करते बल्कि उसकी हिफाजत करते हैं, न उस चीज़ को फरामोश करते हैं जिसका उनके सामने जिक्र किया गया हो। वो दूसरे लोगों को बुरे नाम से याद नहीं करते, अपने पड़ोसी को किसी हालत में नुकसान नहीं पहुंचाते, दूसरों की तकलीफ पर खुश नहीं होते, बातिल की राह और नादुरुस्त मंजिल की जानिब कदम नहीं बढ़ाते, ज्यादा हक से बाहर कदम नहीं रखते। वो खामोश बैठते हैं तो उनका सुकूत किसी के लिए मूजिब अंदोह नहीं होता। अगर उन पर जुल्म सितम होता है तो सब्र बर्दाश्त से काम लेते हैं, उनके काकहे बुलंद नहीं होते, उनका नफ्स रंज व सख्ती में गिरफ्तार रहता है, कार्य आखिरत के लिए हमतन मसरूफ व मशगूल रहते हैं। वो अपने अफाल से लोगों को राहत व आराम पहुंचाते हैं। वो अगर किसी से दूर रहता है तो नफरत के बाइस नहीं, दोस्तों के साथ मेल मिलाप और कुर्बत रहम दिली के बाइस होती है। जान लो कि यही लोग हैं जिनका शियार तकवा है, यही लोग मुत्तकीन हैं और इनके रब के यहाँ इनकी परहेजगारी और निकोकारी का सिला और अज्र बहुत अजीम और शानदार है। बिला शुभा दुनिया की फानी लज्जतों और आसाइशों के मुकाबले में आखिरत का सवाब बहुत भारी और गिरा कद है।

खुदा जो पूछेगा उनसे शुमार जख्मे हुसैन, खुदा जो पूछेगा उनसे शुमार जख्मे हुसैन, जिगर दिखाएंगी जहारा हिसाब के बदले, सलामी आग बरसती।

0: हुसैन की दुख भरी कहानी तमाम दुनिया सुना करे।
1: हुसैन अपना जिक्र है, हुसैन ही कलाम है। हुसैन अपना जिक्र है, हुसैन ही कलाम है। हुसैन सुबह नूर है, हुसैन अपनी शाम है। हुसैन अपनी शाम है। हुसैन दीनो ईमां, हुसैन हुर्फ कुरान। उताए दीन पे जो जान, हुसैन ही का नाम है। नबी का लाडला है जो फातिमा की जान है। अली का शेर है वही जो मेरा इमाम है। अली का शेर है वही जो मेरा इमाम है।

सकीना बीबी, तुम्हारे गुलाम हाजिर हैं, बुझे जो प्यास तो आँखों के जाम हाजिर हैं, ये सिन ये हश

पहाड़ रात बड़ी देर है सवेरे में, कहाँ हो शाम गरीबों के घुप अंधेरे में। जमीन गर्म यतीनी की सख्तियां बीबी, वो सीना जिस पर के सोती थी अब कहाँ बीबी। जनाबे मादरे बेशीर को भी सबका सलाम, अजीब वक्त है क्या दे तसल्लियों का प्याम। अभी कलेजे में काग सी लगी होगी, अभी तो गोद की गर्मी न कम हुई होगी। नहीं अंधेरे में कुछ सूझता कहाँ ढूंढे, तुम्हारा चांद कहाँ छुप गया कहाँ ढूंढे। न इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी, तुम्हारी मांग भी उजड़ी है कोख भी उजड़ी। नहीं लाइनों में इंसान कोई खुदा हाफिज, दरिंदे और ये बेवारिसी खुदा हाफिज़।

आवाज दे रहा है ये मैदान ए करबला, आवाज दे रहा है ये मैदान ए करबला, कुछ रोज रह गए हैं शिकस्ते यजीद में। आप सुन रहे हैं FM 101 से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।

0: एन कहते हैं। आप सुन रहे हैं एफएम 101 से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।
1: एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा।

आवाज दे रहा है ये मैदान ए करबला, आवाज दे रहा है ये मैदान ए करबला, कुछ रोज रह गए हैं शिकस्ते यजीद में। आप सुन रहे हैं FM 101 से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।